0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलू।

0: मनु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुम नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।

0: 才华之旅，速度 FM 不
1: 速度 FM 101.3MHz
2: 우수한 퍼디셔크 라기 함부하기야
3: 장치 소리 FM 스튜디오 타임
4: 10 AM
1: को 10 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुकुंभ नगर पालिका 5 सोलुकुंभ

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूध को नगर पालिका पास सोलू खुम्बू

छोड़ी गाँव घूम जानो पाग भालू गैरा हाथी चितुआ पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।

साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानू बाघ भालू बेड़ा हाथी चितुआ पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।

0: ネーズをジャンブルをお聞きください。
1: सूचना सूचना सूचना सुलुंग जिन वेश जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुलुंग क्षेत्र संचालन भैरहेको छ। निर्माण कार्य का क्रम में माथिल्लो सुलुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा सादुङ क्षेत्र में घाँसपात काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदियोस्। सुलुङ जिल्ला उपभोक्ता समिति सुलुङ।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 2 PM न्यू सपोर्ट बी बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: आदरणीय श्रोता वृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सब प्रदूषितों की आज का आत्मता यू यति कार्पेट में हो विगत तीन दशक देखी को सुनो साथ यति कार्पेट के अंदर कार्पेट को पसारे यति को लोगो हमें न बिस्मिल्लाह यति कार्पेट कार्पेट को शहनशाह।

0: Tech of International Civil Peace Officer, Dickerson, Nadira Labu also received him, Nasapan, Asif Sadasa, Pamari Kalaha, Dirga the Peace Sikar, Yendo Kosa Faltali, Munkusina Hulu, Humay Laki Palikurama Nolaki, Sarizma Tokit Moses Hulu, Minda Nolaki, Kamama Ritsi Hulu, Basaman Nolaki, Akma Bishas, Majesta, Sadasa Amu Saksa, Nagatan Hutu Sumasali, Nasai, Akma Hutia, Goran Guru Laksa. Mr. Samasya Bhaka Bhaktilai, Samasya Anusar Ko Manusaki Sikai Vitaira, Psycho Therapy Ko Nadi Mata, Zidamma Usab Hanuka Sakai, Avasik Osabi Urukhuna Sakisha, Ya Akma Hatia, Vikna Sakisha. Mago, Samasya Ko Sumadan Huna, Sura Zidam, Hasira Bacho, Australian Age Ra, Australian Himalayan Foundation Ko Sumakna, Vikrita Dwara, Zahidma Zan Sundis.
1: इधर आधे आरु सत्ता जाले रह जाऊं
2: आ पढ़ते ना हम के पुणे तो एक के चिंता होनी मुपुगर आई आ चुके
1: बारखा को बेला था आधे आरु में इधर सार पुणे पोकल सकता उजाले बाले रह जुत्ता आज बॉय बूट लगा रहे हिंदू पाने नौकरों तो सार पुणे पोकी आ चुनी
2: आ आई बल्ला समझे सार पुणे को टुकाई बाद बस न था खेतबारी रे धारी में ज्यादा गम बूट लगाने सुतने वाली वचन डॉक्टर क्या उन्हें झुलाने का मात्रे सुतने बैंक बसा लो पर चला बनेरा निश्चित मन्नु माथे हो
1: अन्य सार पुणे को टुकाई बाद जोगी ना घर वरी परिसर पर रखनी कास पराल रदावरा चिकना ज्यादा सोचे तुम्ही बनेरा निश्चित बनु भाई ना
2: बनु भाई नहीं निश्चित तो घर वरी पर दूलहरू पूर्णे र ताल तलैया नदी नाला में विशाल सर्प हुन सक्ने भएको नि नजाने पनि भन्नु भएको थियो
1: हो सावधानी अपनाउँदा सर्पको टोकाईबाट बस्न सकिन्छ सानो लापरवाहीले ज्यान जान सक्छ
3: सतर्कता अपनाउने गरौं सुरक्षित बनाउँ
4: नेपाल सरकार विज्ञापन दिनु

0: रेडियो एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Township. City FM. The studio time.
2: It's 4 PM. And I'm not going to talk with you.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर मैप तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुर्गु नगर पालिका 5 सोलुकुम्बु

0: प्रोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथ में
2: न्यू स्टार डिजिटल कलर तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुंडू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्भदो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852188002222 र 9842803000

दाल सात विशेष आज कल आपने दाल यति कार्पेट को विगत 3 दशक देखि को सुंदर साथ यति कार्पेट के कार्पेट को पसारे यति को लोगो हमें न बिर्सनु होला यति कार्पेट कार्पेट को शीर्षा

0: Check. City FM, the studio time.
1: 10 p.m. रात को 10 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलह दुकान नगर पालिका 5 सोलह कुंभ